0: को सुने भगा ग्राम में तेरे दिदग रुयू
1: गलक में नेक तेकिन जयान वही आए लग में नेक तेकिन हला दे दगा